ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: आशिक माशूक लई हर हद टप सकते ने।
1: बागी ते आशिक हदां तों हदां टपी आउंदे ने।
0: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
2: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
0: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्कनामा।
3: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
4: की होया
3: इत्थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-93-33
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
3: हर कदम तुहाडे नाल।
5: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
6: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
7: हाँ जी।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए कित्थों?
2: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
1: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
3: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी तां ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटा च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लाइक कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
1: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुने कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशन.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी का मसला, कोई इमिग्रेशन की समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा, ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा
3: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा तू किस तरह टापा है
2: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने
4: बागी ते आशिक हदां सरहदां टापी आउंदे ने
2: ऐसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्क नामा
5: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी
2: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्क नामा
6: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिन्हा को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tirefors.com.au

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
4: मेरे नाल ना कुछ खेड़ता ही नहीं, सब खोल दी लग जन्दे ने।
5: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी, कणकां दे ओले।
6: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
5: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
4: हुण दसो मैनू कणकां दे ओले कौन।
5: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।
4: दसो
7: राग खिरवानी में गजल कंपोज हुई है और आप मेहरबान हौसला अफजा दोस्तों की वजह है, भाइयों की काफी मशहूर हुई है, पॉपुलर हुई है। अहमद फराज की गजल है, शोला था जल बुझा, हवाएं मुझे न दूं,

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
3: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, तू किस तरह टप आया?
2: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
4: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
2: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
5: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
2: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्कनामा।
6: अटेंशन ट्रैवलर्स, The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
7: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
8: 15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है, अजे ही मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
9: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: The funniest kids in Australia are here. क्या बातें हैं जी, क्या बातें हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हाँ कृष्णा, तुझे सुनो रेडियो। हाँ जी, 1674 AM दिन है 7 तारीख अगस्त का महीना, सुबह के 8:01 हो चुके हैं। टाइम है लाफ्टर थेरेपी का और मेरे साथ हंसने के लिए आ गए हैं नोनिया जी।
1: सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते। आई थिंक आई हैव टू चेंज माय रफ्तार टुडे बिकॉज़
0: मैंने थोड़ी थोड़ी कहीं मेरी प्रेशर होता है, मैं भी बहुत धीमे धीमे चले हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं, ठीक है, ऑल गुड।
1: आई कैन बीट इट।
0: अच्छा,
1: दैट्स योर प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड और नॉट। आई कैन बीट यू।
0: मैंने पता नहीं इसमें कंपटीशन है। हे राम,
1: उम्मीद करते जी सारे का फ्राइडे बहुत सोना चढ़ गया होना। 7-8 क्या सोहनिया तरीका ने, 7-8-8 अज का दिन सोना हुए, सब का बहुत सोना चढ़े और बहुत सोना गुजरे भी, डेफिनेटली गुजरूगा, क्योंकि असं आस्ते अरदास सिर्फ इसे गल की करते हैं। यस, अज जिन्हों के भी जन्मदिन ने सारे बहुत बहुत मुबारक, एनवर्सरिया ने उन्होंने भी मुबारक। जे तुम कुछ होर शेयर करना चाहते हो मुबारक, और जो तुम शेयर करोगे असं लाउड स्पीकर से बोलेंगे जी, फलाने सिंह नू, फलानी कौर नू, फलानी कुमारी नू, सब नू मुबारक।
0: मुबारक जी, मुबारक। तो मुबारक वैसे हजे आई नहीं, पर चलो मेरे वालों मुबारक, हैप्पी बर्थडे टू एनी वन हू इज सेलिब्रेटिंग। मैनू हूँ थोड़ा फोमो फील हो रहा, मेरा नहीं है, पर चलो इट इज व्हाट इट इज, ठीक है,
1: इट्स ओके, इट्स ऑलराइट।
0: आएगा अपना टाइम, आएगा नोनिया जी, आएगा।
1: ऑल इज वेल
0: करदे आपां बच्चियां दे नाल, ते शुरू करदे आं गल्लां बातां इन्हां दीआं, बुझारतां ते इन्हां दे चुटकले ते बोलियां भी। अज तां फ्राइडे आ गया, सो वी विल गेट मेनी बोलियां, ते शुरुआत करदे आं फिर जी। ओपनिंग बैट्समैन होणगे मन्नत ते फतेह, ते बाद चो तवनीत एंड सिबलिंग्स, रेडी रहो।
1: यप,
0: हेलो
1: फतेह जी, मन्नत जी,
0: हेलो हेलो हेलो, हेलो। चलो अपा इस तरह कर दें, फिलहाल कनेक्ट नहीं कर पा रहे उन्हां नाल, ते अपा तेग नू ले लेने जी भाई।
1: ओह यस,
0: सही कि नहीं।
1: यप,
0: हेलो,
2: सत श्री अकाल
1: कृष्ण अंकल।
0: लगले में वीरा कहना होगा।
1: ओ वीरा, यस सॉरी, ही इज वीरा, ही इज वीरा, यस सॉरी, दैट्स माय बैड,
0: ही
1: इज वीरा।
0: हेलो हेलो, बोलदे नहीं आज, की चक्कर हो गया ही
1: यार, जल्दी जल्दी बोलो, असि काले पए हां थोड़ा चुटकला सुनन नु, बोली सुनन नु।
2: ठीक है
0: ठीक है। हां जी, कौन बोलदा, कौन पया जी, हुन कंफ्यूजन जी क्रिएट हो गई, मेनू लगदा मन्नत तुसी हो।
1: मन्नत,
2: मन्नत।
0: चलो वेरी गुड। हां जी, किवें हो, ठीक ठाक, की हो गया अज, हैरान हो के पहली बार आ गई।
2: ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਭੂੰਡ ਮਾਰ ਗਿਆ
0: ਡੰਗ, ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਭੂੰਡ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੰਗ, ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦੇ ਭੂੰਡ ਮਾਰ ਗਿਆ
1: ਡੰਗ।
0: यार सवेरे सवेरे बच्चों वायलेंस च आ गए यार, फ्राइडे से आज
1: तक नहीं, नहीं मेनू तो गाना याद दवाता, कुड़ी बन के शहद दी मक्खी आयो डंग मार गई।
0: बल्ले, क्या बात है, क्या प्लेलिस्ट है छोटी, अमेजिंग। थैंक यू मन्नत, थैंक यू सो मच।
1: फतेह जी,
0: फतेह नाल कराओ फिर गल,
2: फतेह नाल भी गल कर लो
1: जी, करा दियो जी।
2: सत श्री अकाल नोनी आंटी जी ने, कृष्णा जी,
0: सत श्री अकाल फतेह
1: सिंह जी, की हाल चाल ने, सुनियो मुनियो। बस तुसी वधिया, असि भी चढ़दी कला च फिर।
0: ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, की चली जांदा तैयारी स्कूल दी?
2: अगे मम्मा सानू ਦਿਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨ ਕਮਗੇ
0: ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨ ਕਮਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨ
1: ਕਮਗੇ
0: ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਮਾਧੁਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨੀ
1: ਸੀ ਵੀਰੇ ਇਟਸ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ
0: ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇਗ
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇਗ ਜੀ
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ
0: ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ
1: ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ
0: ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸਭ ਵੇਖੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਵੈਰੀ ਰੂਡ ਵੈਰੀ ਰੂਡ
1: ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੂਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ
0: ਯਾਲਾ ਯੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ
1: ਹੈ ਹਬੀਬੀ ਹਬੀਬੀ ਫੁਰਤੁਮ ਫੁਰਤੁਮ
0: ਫੁਰਤੁਮ
1: ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਤੁਮ
0: ਤੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂਨੀ ਆਂਟੀ
2: ਪਤਾ ਨਹੀਂ
0: ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ
1: ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇਗ ਜੀ
2: ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
2: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा। तू किस तरह टप आया?
1: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
3: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
1: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
4: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
1: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं। फिल्म इश्कनामा।
5: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
6: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
7: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
6: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। goldleafdairy.com।
8: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नु 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: बगैर किसी मोटिव दे किया गया है टीनेज अटैक काफ़ी ज़्यादा मापियां नू चिंता दे विच पा गया है। खबरां दे अज दे इस सैगमेंट दे विच फिलहाल इन्ना ही दिओ इजाजत। धन्यवाद, सुनते रहो रेडियो हाँ जी 1674।
1: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
2: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आया।
1: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
3: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
1: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
4: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
1: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
5: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकदा है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जां वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नू देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
6: डकैत तो साढ़े सारे दे अंदर हो, मौका मिलता है जो हाथ लगता है वो लुट लेंदा है।
7: सिर्फ फिल्म ही नहीं, ये है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
6: जदों एक जोकर तख्त ते बैंदा तां ओह राजा नहीं बनदा, ओह पूरे राज नू सर्कस बना लैंदा।
7: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार। 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: कॉर्पोरेट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
1: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
2: हाँ जी रेडियो
3: Big Perp Bubble Ride Tenu Pataya I'm a brown boy
4: Downy tu

की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेयरी .com।
2: हां जी

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते। हाँ जी हाँ जी।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचिया।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए।

जो तुद पावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान।

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। केवड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़ आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते

केतिया दुख भूख सदमार ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए ओ जाने।

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित छपे छंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात नय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नर सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है।

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलचे कंस आदिष्टे तरम सर्वां परनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे।

से चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज भेषय के आगंज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करने के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदा में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चात्री छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमित तो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम परनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम परनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है गजुर जुमाल है
के अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है कि अमितो प्रभूत है, कि अमितो प्रसा है कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है कि अमितो अभंग है, मद भार छंद तो प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विश अभंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद।

अंठन अपार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है भव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालं प्रनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए शराब सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान कपूत जात बिचारे इते पै तो कांपे अंधकुनागे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुवत कौन गने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब सुचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार कर चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकीनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे ना।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनू अंत दिन हर

आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, जो सतगुरां ने पावन हुक्मनामा आपां नूं बख्शिश कीता है, उस दी विचार दे नाल जुड़दिया होया एक बारी सारी संगत प्यार

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। आपके दिन को एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आरंभ करने के लिए अध्यात्म से ज्ञान के मोती चुन चुन कर आप तक लेकर आता हूं। हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं कि संसार केवल हमारी मेहनत से नहीं चलता, उसमें दूसरों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और भगवान की कृपा भी जुड़ी होती है। आज शनिवार है, शनि देव जी को प्रणाम कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। कई बार हम सोचते हैं मैंने सब कुछ अपने दम पर किया है, किंतु सच्चाई यह है कि जीवन में बहुत कुछ अदृश्य कृपा से भी मिलता है। कैसे मिलती है यह कृपा, क्या होता है इसका असर, जानते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनिए शनि देव जी का ये प्यारा सा भजन पुण्य दर्शन में।

0: सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: किचन द स्टाइल डल लग दा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो क्या जो भी हम सब अपने जीवन में कर रहे हैं वो क्या अपने दम पर कर रहे हैं? क्या मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन रहे हैं? आज की कामयाबी, हमारी सेहत, रिश्ते, नाते, ये सब कैसे चल रहे हैं? क्या हम ये सब कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और उसके दुखों का कारण भी यही है। इसीलिए हम दुखी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता ही मिति मन्यते। अर्थात अहंकार में पड़ा व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, किंतु वास्तव में ईश्वर की व्यवस्था, अनेक लोगों का सहयोग और अनदेखी कृपा भी साथ चल रही होती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह से सीख दे देता है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक शहर में एक समोसे बनाने वाला बड़ा फेमस था। इतना रश होता था कि लोगों को अपना नंबर लगाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था, और पेमेंट करने के बाद अपना पैकेट लेने के लिए इतनी मारामारी होती थी, पूछे मत। उसी भीड़ का फायदा उठाकर एक बूढ़ा व्यक्ति अपना हाथ भी उस भीड़ में कर देता, और एक पैकेट समोसों का उसके हाथ में आता और वो लेकर चला जाता, अपना, अपने बच्चों का पेट पालता। उसी दुकान पर एक नया नौकर आया। एक दिन नौकर ने ये सब होते देखा तो इग्नोर किया। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, और उसने सारी बात उस समोसे वाले अपने सेठ जी को बता दी, जो गर्मा गर्म समोसे तल रहे थे और ग्राहकों को दे रहे थे। अब नौकर की सारी बात सुनी, और सुनकर उस हलवाई ने, उस समोसे बनाने वाले ने क्या कहा अपने नौकर से, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया, आप सुनते रहिए पुण्य दर्शन।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्त लागू।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो उस नए नौकर ने बूढ़े व्यक्ति की जो हरकत है वो अपने मालिक को बता दी, ये सोचकर कि मालिक खुश होगा क्योंकि उसने उसका नुकसान होने से बचा लिया। उसने मालिक से कहा, सेठ जी ये बूढ़ा आदमी एक बार नहीं हर रोज आता है और भीड़ में हाथ आगे कर लेता है और कोई ना कोई लिफाफा पकड़कर चुपके से चला जाता है बिना एक पैसा दिए। मालिक मुस्कराया और बोला, बेटा ये जो बाबा है ना किसी का लिफाफा नहीं पकड़ता, बल्कि इसे मैं ही लिफाफा पकड़ाता हूं और अनदेखा कर देता हूं। ये बेचारा बूढ़ा भीख में कुछ नहीं मिलता ना, तो ये मेरी दुकान के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान कब इसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होगी और मैं उस भीड़ में चुपके से अपने चार समोसे पकड़ लूंगा और अपने बच्चों का पेट पाल दूंगा। मैं जानता हूं कि ये पैसे भी नहीं देता, किंतु मैंने कभी इसे रोका नहीं। कौन जाने ये दुकान किसकी प्रार्थना से चल रही है, शायद भगवान की भी यही इच्छा हो। मित्रों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी आध्यात्मिक सीख छुपी हुई है। हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं कि संसार केवल हमारी मेहनत से नहीं चलता, उसमें दूसरों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और भगवान की कृपा भी जुड़ी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन ये जीवन की सच्चाई नहीं है। वो गरीब बूढ़ा, उसके मन में कृतज्ञता थी। वो सिर्फ खाना नहीं खाता था, समोसे नहीं खाता था, वो इस दुकान के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता था। हमें भी अपने जीवन में थोड़ा रुक कर ठहर कर सोचना चाहिए कि हमारी सफलता में किसी की प्रार्थना, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों की कृपा, किसी मित्र का सहयोग या किसी अनजान व्यक्ति की शुभकामनाएं शामिल हो सकती हैं। तो इस वीकेंड पर मित्रों, अगर आप किसी से शुभकामनाएं, आशीर्वाद नहीं ले सकते, तो किसी का दिल दुखाकर उसकी बददुआएं भी मत लीजिए। सावधान रहिए, किसी को भी छोटा मत समझिए, किसी की भावना का मजाक मत उड़ाइए। कौन जाने आपकी जिंदगी में भी किसी की सच्ची दुआ काम कर जाए। और जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं, जहां करुणा, सेवा और कृतज्ञता होती है, वहां भगवान की कृपा अपने आप चली आती है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा पुण्य दर्शन। और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, अपने दास के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो भी भगवान की सेवा में ऐसे ही लगा रहे, आप तक ज्ञान की बातें पहुंचाता रहे बिना किसी अभिमान के। अपनी कोई समस्या हो जिसे आपका दास शास्त्रों के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार उसका कोई समाधान खोज कर ला सकता है, तो भी मैसेज कीजिए। मिलते हैं सोमवार को। आने वाला सोमवार सावन का दूसरा सोमवार होगा, तो इस पर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। मिलते हैं सोमवार को। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट से ले सकते हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au
3: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
4: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो goldleafdairy.com
5: ਲਾਦੇ ਫੇਰੇ
6: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
7: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ

0: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
1: चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
2: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।